0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network,
2: Pegham Aman Hai,
3: Pyar Ki Ek Duniya Lekar,
1: Mohabbat Samet Kar.
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

बिल्कुल जनाब, कुर्बानी सिर्फ जानवरानो मकवाए पदी अख्तर के पल जद अना हसद बदगुमानी कुर्बान कहे जड़ सफा कहे

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया, जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रोशन अपनी कार के जरिए पाकिस्तान में शरीयत के ऐन मुताबिक फाइनेंसिंग से गाड़ी खरीदी और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाई। तुम जुड़े हो तो बढ़ा है पाकिस्तान। तो फिर आज ही स्टेट बैंक की वेबसाइट विजिट करें और किसी भी इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبرداري درکول کیږي چې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند شي 0331 47 48 317 0331 سلو

तो ये जो आई एस है, ये जो एस है हमारे पास रहा है, ये हमारे पास है। अगर हम है यहाँ से हटा दे, शी इज रीडिंग अ बुक, अगर यहाँ हम इसको हटा दे तो हमें पता फिर नहीं चलेगा शी रीडिंग अ बुक। तो सेंस नहीं बन रहा कि अभी जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एज यूज करेंगे। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम एज यूज करेंगे, वी यू दे के साथ हम आर यूज करेंगे, और इसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास जो हमारे पास आता है आई के साथ हम एम यूज करेंगे, आई के साथ हम एम यूज करेंगे। ये फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे डिटेल के साथ, अभी टाइम बिल्कुल कम है तो हम इसको नहीं। तो फिर हमारे पास इसके एग्जाम आते हैं, एक्सिलरी वर्ब के एग्जाम आते हैं, हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास है ए एम एम आई एस एस ए आर ए आर डब्ल्यू एस वाज डब्ल्यू आर ई वर बी ई बी एंड बी डबल ई एन बीन एंड बी ई आई एन जी बींग। ये हमारे पास किसके इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस टेंस या पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूँ, दे आर प्लाइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। एंड हमारे पास हैव हैज एंड हैड इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस के लिए। She has completed her work. उसने अपना काम complete कर दिया। I have eaten food. मैं खाना खा चुका हूँ। Do, does and did इस्तेमाल होता है सवाल बनाने के लिए, नफी बनाने के लिए। या मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ, Do you play football? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? Did you? अपॉलॉजी, Do you play football? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? अगर यहाँ पर हम सवालिया बनते, He does not work here. वो यहाँ काम नहीं करता। यहाँ हम नेगेटिव बनते, वो यहाँ काम नहीं करता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या करता है, ये इजाजत, सलाहियत, मशवरा वगैरह जाहिर करते हैं। जिस तरह जब हम बात करते हैं, यानी हम कैन यूज करते हैं, हम कुड यूज करते हैं, हम मैं यूज करते हैं, हम माइट यूज करते हैं, हम शैल यूज करते हैं, हम शुड यूज करते हैं, हम विल यूज करते हैं, हम वुड यूज करते हैं, हम मस्ट यूज करते हैं, हम आउट टू यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? चलो मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। लेकिन आई कैन स्विम यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रही, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कमांड को जाहिर कर रहे, यू शुड, शुड का मतलब ये कि तुम्हें चाहिए, जोर दे रहा है इस बात पे, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें चाहिए कि तुम मेहनत कर करो। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की बात मानी। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि एक कमांड है, और या अगर हम बात करें तो सजेशन भी, किस तरह का कि आपने क्या करने की, आपने अपने माँ बाप की बात माननी है। अगर हम पहचान की बात करें, पहचान का आसान तरीका एक जरिए खुद से सवाल, चलिए हम सवाल करते हैं खुद से। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम मेन वर्ब को, इस तरह हम राइटिंग को लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर हम किस चीज का, हम प्रेजेंट की बात करें, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज राइटिंग, वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, आई एम राइटिंग। यानी जब हम बात करें प्रेजेंट की बात करें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हम इज लगाएंगे और आई के साथ हम एम लगाएंगे, और बाकी के साथ हम वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ही, यानी आर हम यूज करेंगे, सही है। तो यहां पर हम बात करें, ही इज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है, नॉट वुमन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। ये बात आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है कि ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो नॉट है हमारे पास, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। एज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। सवाल में ऑक्सिलरी वर्ब अक्सर शुरू में आता है, जिस तरह कैसे, मैं आप लोगों की मिसालों के साथ वाजह करता हूं। जिस तरह एज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिखता है, एज ही राइटिंग अ लेटर। या जिस तरह डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। तो हमने इसको फिर बाद में हम देखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज किया ताकि आप लोग ये ना कहूं कि फिर तैयारी नहीं, अपॉलॉजी सालार ने तैयारी नहीं किया, इस तरह मुंह उठा के आया है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, असी गरीबा ज़ईफा कमजोरा, पर असी टाइम पास आने, ओके, यानी हम गरीब जरूर है, हम कमजोर जरूर है, हम ज़ईफ़ जरूर है, लेकिन हम कभी धोखा देने वाले में से नहीं है। अल्लाह माफ करे हमें।

भाई दवी टाइम हमारे पास बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि टाइम खत्म होने के हैं, लेकिन हम इस पे बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी ये क्या करता है। ये हमारे पास दूसरा जो वर्ब है मैनर भी उसका मदद करता है। कैसी मदद करता है जुमले में, तो हम इस टेंसेज में के साथ टेंस असल में किसे कहते हैं, टेंस कहते हैं जमाने को। टेंस जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, इसका मतलब है आसान शब्द में हम इसको भी बात करते हैं कि टेंस जो हमारे पास ये टेंपस से निकला, इसका मतलब है वक्त, टाइम। अक्सर लोग कहते हैं कि टेंस ये वो, नहीं, टेंस जो है टेंस TENSE टेंस TENSE टेंस, ये टेंपस से निकला है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टाइम। यानी हम टाइम को फिर थ्री कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट है हमारे पास, पास्ट है एंड फ्यूचर है। सही आप लोगों ने इस बात को, लेकिन ये फिर हम कभी बात करेंगे डिटेल के साथ इस पे टेंस में। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे इस पे डिटेल के साथ। इसके साथ मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
0: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम मुंग सरी उसे। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।